नमस्कार, 4EBK ग्लोबल के साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार। मेरे पिछले कार्यक्रम में आरडी बर्मन जी यानी पंचम दा के नॉस्टैल्जिक गीत थे। आज मैं लाई हूं एक और वैसे ही नॉस्टैल्जिक संगीतकार और उनके गीत। तो चलिए पहले यह गीत सुनते हैं और फिर हम बातें करेंगे आज के संगीतकार जोड़ी की।

अभी आपने सुना एक बेहद ही नॉस्टैल्जिक गीत जो आज भी सबके लिए ताजा है और हर महफिल में गाया जाता है। यह गीत था फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से और इसके संगीतकार जतिन ललित। आज हम इन्हीं की बातें करेंगे और गीत सुनेंगे। हरियाणा के एक संगीतमयी परिवार से आते हैं जतिन और ललित। शास्त्रीय संगीत के जाने माने वोकलिस्ट पंडित जसराज इनके अंकल थे। जतिन ललित भाई हैं और उनकी प्रारंभिक संगीत की शिक्षा उनके पिता पंडित प्रताप नारायण ने उन्हें दी थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाली जोड़ी के प्यारेलाल जी ने जतिन ललित को गिटार और पियानो सिखाया था। जतिन और ललित की बहनें हैं सुंदर अदाकाराएं सुलक्षणा पंडित और विजेता पंडित। आपको और बातें बताने से पहले चलिए सुनते हैं यह गीत फिल्म कुछ कुछ होता है से, जिसका संगीत जतिन ललित का है।

जिन श्रोताओं ने देर से ट्यून इन किया है उनका स्वागत है 4EB के ग्लोबल प्रसारण के साप्ताहिक भारतीय कार्यक्रम नमस्ते वर्ल्ड में। मैं हूं आपकी आरजे सीमा श्रीकुमार। आज हम म्यूजिक डायरेक्टर ड्यूओ जतिन ललित के बारे में बातें कर रहे थे। जतिन ललित की जो जोड़ी है वह काफी एक्सीडेंटली बनी है। पहले यह जतिन और बड़े भाई मंधीर की जोड़ी थी। इस जोड़ी ने गिने चुने काम किए हैं और अपना कोई मार्क नहीं बना पाए। उस दौरान उन्हीं के छोटे भाई ललित संगीत की ओर रुझान बना रहे थे। तब सोचा गया कि जतिन और ललित की जोड़ी बनाकर देखा जाए। 1991 में फिल्म यारा दिलदारा के संगीत से इस नई जोड़ी ने काम करना शुरू किया। चलिए इसी फिल्म का यह गीत सुनते हैं।

जतिन ललित की जोड़ी को बड़ी प्रसिद्धि मिली फिल्म खिलाड़ी के संगीत से और फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। फिल्मफेयर अवार्ड नॉमिनेशन भी इसी दौरान हुआ। जतिन ललित का संगीत आरडी बर्मन के संगीत से काफी प्रभावित है। करीब 480 गाने और 75 हिंदी फिल्मों का संगीत इस जोड़ी की झोली में है। फिल्मी दुनिया के तकरीबन सभी मशहूर गीतकारों और गायक गायिकाओं के साथ जतिन ललित ने काम किया है और कई सुपरहिट गीत हमें दिए हैं। गुलाम फिल्म का आतिक्या खंडाला गीत जतिन ललित ने ही लिखा था और संगीतबद्ध किया था। आमिर खान के लिए और आमिर खान की

जतिन ललित के हाईएस्ट सेलिंग बॉलीवुड साउंडट्रैक्स रहे हैं 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 1998 में कुछ कुछ होता है, 2000 में मोहब्बतें, 2001 में कभी खुशी कभी गम। 16 सालों के म्यूजिक ड्यूओ के बाद जतिन ललित कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अलग हो गए, परंतु 2020 में फिर एक हुए और मुंबई में स्टेज शोज किए। जब जतिन और ललित अलग अलग होकर अकेले अकेले म्यूजिक डायरेक्शन कर रहे थे, तब जतिन ने दबंग का गीत मुन्नी बदनाम हुई का संगीत दिया था और वह इतना पॉपुलर हुआ कि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। जैसे आशा भोंसले और आरडी बर्मन की सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी है और हिट गानों के लिए मशहूर है, उसी तरह जतिन ललित की जोड़ी और अलका याग्निक मशहूर थे। चलिए अब मोहब्बतें फिल्म का यह गीत सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं 4EB का ग्लोबल प्रसारण का साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड, आपकी आरजे सीमा श्री कुमार के साथ। मैं आपको पहले बता रही थी कि जतिन ललित का संगीत आरडी बर्मन के संगीत से काफी प्रभावित है। अगर आपको याद हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गीत रुक जा ओ दिल दीवाने, जब यह गीत शुरू होता है तो लगता है कि यह धुन कुछ जानी पहचानी है। जी हाँ, क्योंकि शुरुआती ट्यून आरडी बर्मन की फिल्म हम किसी से कम नहीं का गीत बचना ए हसीनों से मिलती जुलती लगती है। साथ ही आरडी बर्मन की ही तरह जतिन ललित भी ब्रास सेक्शन और गिटार लिक्स का प्रयोग करते थे। चलिए अब डीडीएलजे का वही गीत सुनते हैं।

आर डी बर्मन ने जब धीरे धीरे म्यूजिक डायरेक्शन का काम बंद किया, उस दौरान जतिन ललित ने अपना करियर प्रारंभ किया और उनके संगीत में पंचमदा के संगीत की झलक भी थी। पंचमदा की आखिरी पेशकश थी 1942 अ लव स्टोरी, जिसके दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। इस फिल्म के संगीत के लिए पंचमदा को मरणोपरांत फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उसी समय जतिन ललित की फिल्म कभी हाँ कभी ना आई और उसका संगीत सबको पसंद आया। उसमें पंचमदा के संगीत की झलक दिखती थी। जतिन ललित ने लता मंगेशकर के साथ काफी काम किया है। वे बताते हैं कि लता मंगेशकर के पास गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था और गजब की याददाश्त थी। डीडीएलजे का मेरे ख्वाबों में जो आए गीत के लिए जब लता जी तैयार होकर आई तो जतिन ललित काफी नर्वस हो गए। तब घर परिवार और बचपन की बातें करके लता जी ने माहौल हल्का किया। चलिए सुनते हैं कभी खुशी कभी गम का यह गीत।

जब जतिन ललित बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए थे उस समय काफी एक्शन फिल्म्स का बोलबाला था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बप्पी लहरी का संगीत चलता था जो कि धीरे धीरे रूटीन जैसा बन गया था और म्यूजिक अपना चार्म खो रहा था। गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म्स की मांग थी उस समय। मेलोडी गीतों की मांग बहुत ही कम थी। पुराने संगीतकार ज्यादा साउंड मिक्सिंग नहीं करते थे तो केवल गायक को रिकॉर्ड कर म्यूजिक मिलाना ही उनका काम था, तो वे एक ही समय में कई फिल्मों का संगीत किया करते थे। परंतु जतिन ललित ने मल्टी ट्रैक्स का चलन शुरू किया। वे सिंगर को स्टूडियो में पहले रिहर्सल करवाते और फिर मिक्सिंग होती। इससे उन्होंने यादगार म्यूजिक बनाया जिसकी क्वालिटी भी बेस्ट हुआ करती थी। चलिए सुनते हैं फिल्म खामोशी का यह गीत।

जतिन ललित अपने गीतों के बोलों के बारे में काफी ध्यान दिया करते थे। वे कहते हैं कि साधारण व्यक्ति जब कोई गीत सुनता है तो उसकी धुन गुनगुनाता है और फिर उसके बाद बोल गाता है, इसलिए धुन की मेलोडी और अच्छे बोल होना एक गीत के लिए बहुत जरूरी है। गीत में कितनी बार और कहां कहां गिटार बजा, गीत में कितनी बार और कहां कहां गिटार बजा, इससे एक साधारण व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं होता है। वे गीतकार मजरू सुल्तानपुरी को गुरु माना करते थे। उनके गीतों में शुरू से अंत तक एक तालमेल होता था और उन गीतों का संगीत तैयार करना भी आसान हो जाता था। चलिए अब सुनते हैं यस बॉस का यह गीत।

जतिन ललित जोड़ी की बातें करते करते समय बीत गया। उनके गीत भी काफी नॉस्टैल्जिक हैं। आशा है आज का विषय और गीत आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए FM पर शनिवार को और ग्लोबल पर रविवार को सेम टाइम। आप सबकी मंगल कामना के साथ ही आज का यह प्रसारण समाप्त करने का वक्त हो चला है। मैं आपकी RJ सीमा श्री कुमार आपसे फिर अगले महीने मिलूंगी। सीमा नाउ साइनिंग ऑफ। नमस्कार।